ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। चीन में कौमी दिन मनाने के लिए जुमेरात को हफ्ता भर की तातीलात का आगाज हो गया है। इन तातीलात में करोड़ों चीनी सफर करते हैं, लेकिन बिगड़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात की वजह से जापान आने वाले सियाहों की तादाद में कमी मुतवक्के है। चीनी हुकूमत का तखमीना है कि तातीलात के इस अरसे के दौरान लोग 2.13 अरब बार सफर करेंगे। चीन की बड़ी ट्रेवल एजेंसी का कहना है कि इन तातीलात के दौरान मकबूल इंतखाब जनूबी कोरिया, जनूब मशरकी एशिया और यूरोप हैं। जापान इससे कबल चीनी सयाहों में इंतहाई मकबूल था, लेकिन इस साल सरफहरिस्त मकामात में शामिल नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख होते ताल्लुकात के पस मंज़र में चीनी एयरलाइंस ने जापान के लिए कई रूट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इसे आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने की अपनी तजवीज़ का अमरीकी जवाब मौसूल हुआ है, लेकिन मुजाकरात के इम्कानात बदस्तूर गैर यकीनी हैं क्योंकि दोनों फरीक अब भी शराइत पर इख्तलाफ रखते हैं। तेहरान ने बुध के रोज ये ऐलान किया। ईरानी फरीक ने आबनाए को दोबारा खोलने के लिए 7 रोजा मंसूबा पेश किया था। अमरीका और ईरान के हुक्काम कतरी सालिसों की मदद से बिलवास्ता मुजाकरात का एक सिलसिला मुनक़िद कर रहे हैं। ईरानी मीडिया जराए ने खबर दी है कि वजीर खारजा अब्बास अराकची ने सदर मसूद पजिशकियान के सामने अमरीकी जवाब पेश किया। जवाब से मुतालिक तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं। ताहम रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बुध के रोज एक मुतल्लिका जरिए का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज में एक ऐसे अमल की वजाहत की गई है जो दोनों फरीकेन को जून में तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त के एक बेहतर वर्जन की तरफ वापस ले जाएगा, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ठोस इकदाम शामिल हैं। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान ने जुमेरात से गैर मुल्की शहरियों के लिए रिहायशी इजाजतनामे के तरीक़ेकार की फीस में इजाफा कर दिया है, और सितंबर तक के 3 महीनों में बड़े जापानी मसनूआत साजों के कारोबारी तासुर में बेहतरी आई है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 1 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गो और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान में विदेशी नागरिकों के लिए निवास परमिट शुल्क बृहस्पतिवार से बढ़ा दिया गया है। पहले निवास दर्जे के नवीनीकरण या परिवर्तन का शुल्क 6,000 येन यानी लगभग $38 और ऑनलाइन शुल्क 5,500 येन यानी लगभग $35 था। बृहस्पतिवार से ये शुल्क निवास अवधि के आधार पर अलग-अलग कर दिया गया है। 3 महीने के लिए निवास अवधि बढ़वाने या निवास दर्जा बदलवाने के लिए अब काउंटर और ऑनलाइन शुल्क बढ़ाकर 10,000 येन यानी लगभग $63 कर दिया गया है। निवास अवधि को 1 साल के लिए बढ़वाने का शुल्क 33,000 येन यानी लगभग $210 और इसका ऑनलाइन शुल्क 27,000 येन यानी लगभग $170 हो गया है। निवास अवधि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बढ़वाने का शुल्क 75,000 येन यानी लगभग $476 और इसका ऑनलाइन शुल्क 65,000 येन यानी लगभग $413 कर दिया गया है। स्थायी निवास परमिट का शुल्क 10,000 येन से बढ़ाकर 2,00,000 येन यानी लगभग $1,270 कर दिया गया है। इसका आवेदन केवल काउंटर पर ही किया जा सकता है। शरणार्थी दर्जा प्राप्त लोगों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों सहित कुछ व्यक्तियों को शुल्क में छूट दी गई है। स्थायी निवास परमिट के जांच संबंधी दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया गया है। ये परमिट देने या ना देने पर विचार करते समय अधिकारी इस बात पर गौर करेंगे कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय समान आकार के जापानी परिवार की औसत आय से लगातार अधिक रही है या नहीं। जापान में सितंबर तक की तिमाही में बड़ी विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी विश्वास में सुधार हुआ। बृहस्पतिवार को जारी बैंक ऑफ जापान के तांकान सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार एआई संबंधी मांग के बलबूते लगातार छठी तिमाही में विश्वास बढ़ा। मनोभाव सूचकांक 24 अंक पर रहा, जो पिछली तिमाही से 2 अंक अधिक है। धनात्मक आंकड़ा दर्शाता है कि निराशावादी रुख रखने वाली कंपनियों की तुलना में आशावादी कंपनियों की संख्या अधिक है। केंद्रीय बैंक ने लगभग 9,000 कंपनियों का सर्वेक्षण किया। सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के चलते विशेष रूप से अलौह धातु, उत्पादन मशीनरी और विद्युत मशीनरी क्षेत्रों का विश्वास सुधरा। हालांकि इसी अवधि में गैर विनिर्माताओं के मनोभाव में 2 अंकों की गिरावट आई और ये धनात्मक 35 पर पहुंच गया। कर्मचारियों और कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ खराब मौसम ने न केवल खुदरा विक्रेताओं बल्कि आवास और रेस्तरां क्षेत्रों की कंपनियों का विश्वास भी कमजोर किया। श्रमिकों की भारी कमी वाले क्षेत्रों में विदेशियों को आमंत्रित करने की जापान की योजना एक चुनौती का सामना कर रही है। जापानी शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय

घंटों की भाषा कक्षाएं लेनी होंगी और इस 3 साल के कार्यक्रम के दौरान अपने नियोक्ताओं के खर्च पर 100 या उससे अधिक घंटों की कक्षाएं भी लेनी होंगी। जून में जापानी भाषा के लगभग 900 विद्यालयों और अन्य संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 30% से भी कम ने कहा कि वे ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। आव्रजन सेवा एजेंसी ने जापानी भाषा के विद्यालयों और अन्य संस्थानों से सहयोग प्राप्त करने के लिए पिछले महीने एक सर्वेक्षण करते हुए उन्हें ब्यौरा दिया। एजेंसी के एक अधिकारी ने उनसे गुणवत्ता बनाए रखते हुए प्रशिक्षण के अवसर सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने पर विचार करने का आग्रह किया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन में बृहस्पतिवार से राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ये वो समय है जब करोड़ों चीनी लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास के कारण जापान आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आने की आशंका है। चीन सरकार का अनुमान है कि छुट्टियों के दौरान 2.13 अरब यात्राएं होंगी। चीन की प्रमुख ट्रैवल एजेंसी का कहना है कि इस अवधि के दौरान लोकप्रिय गंतव्य दक्षिण कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप हैं। पहले जापान चीनी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन वो इस साल शीर्ष पायदानों में शामिल नहीं है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर चीनी एयरलाइंस कंपनियों ने जापान के कई मार्गों के लिए अपनी सेवाएं स्थगित कर दी हैं। ईरान सरकार का कहना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के उसके प्रस्ताव पर उसे अमेरिका से प्रतिक्रिया मिल गई है, लेकिन बातचीत की संभावना कम है क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों को लेकर अब भी एकमत नहीं है। तेहरान ने बुधवार को ये घोषणा की। ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के लिए 7 दिवसीय योजना प्रस्तुत की थी। अमरीका और ईरान के अधिकारी कतर के मध्यस्थों की मदद से अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं। ईरानी मीडिया केंद्रों की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के समक्ष अमेरिका की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इस प्रतिक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बुधवार को एक संबंधित सूत्र के हवाले से बताया कि दस्तावेज में जून में हुए समझौते के नवीन संस्करण पर दोनों पक्षों को वापस लाने की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाना भी शामिल है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।